आधारो, साच नाम आधार, मेरा जन भुखा सब गवाइया, कर शांत सुख मनाय सया जने सब पुजाइया, सदा कुरबान की तागुर बैठो इसनिया बढ़ियाइया, कह नानक सुनो संतो सब तरो फेरो, साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंसा उतित कर सुपागे, कर सुपागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया, पंच दो तुद वस कीते काल कंठ कुमारे, तुर करम पाया तो जन को से नाम हर कह लागे, कह नानक तय सुख आतित करन हद वाजे, आनंद सनोबट भागी हो सकल मनोरथ पूरे पार, वरम प्रपाया उतरे सगल विसोरे,

ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती समर कै गुरु नानक लई ते आए फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोविंद नाम सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आइए।

तेग फतेह। बिरध की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालसा जी के बोल वाले बोलो जी। सिखानु सिखी दान केस दान रत दान विवेक दान विसाह दान प्रोसा दान धन सरदान नाम दान श्री अमृतसर जिया दे दर्शन स्नान। चौंकियां झंडे बंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार। बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उची मत पत दा राखा वाहिगुरु हे अकाल पुरख। अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जी ओ श्री ननकाना साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरु धामां दे जिन्हां तों खालसा पंथ नूं।

श्री हर कृष्ण ते आइए जिस जठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरे घर नौ निदा बिताए, सब थाई हुए सहाय दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी, सब थाई हुए सहाय दसा

पवित्र कड़ा पुरुषा जी देख सज के हाजिर है, धर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद। समूह साध संगत विच वरताउण दी आग्या बख्शो, जो जी सके आप जिया दा पवित्र नाम सतनाम श्री वाहे गुरु जपे। आप जी करो कृपा अपनी अमृतमई बाणी विचों पावन पवित्र हुक्म दी दात बख्शो, हुक्म अनुसार जीवन जीवन दी समर्था बख्शो। अखर वादा घाटा भुलचक माफ करनी, सिख पढ़ दे सुन दे सरबत लाहे बंद होवन। नानक नाम चढ़दी कला तेरे ताने सरबत दा भला। दोहरा गया पई अकाल की, सब सिखन को हुक्म है। गुरु ग्रंथ जी।

ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੇ ਸਭ ਕੋਏ ਕੇਵਲ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੇਵਲ ਚੀਰਾ ਰਹਾਉ ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰਹਾਈ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ ਸਭ ਸਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਸਿੱਧਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਤੁਦਵਣ ਸਦੀਕ ਨੇ ਨਾ ਪਾਈਆ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਨਾ ਹੀ ਠੱਕ ਰਹਾਈਆ ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਬੇਚਾਰਾ ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹੇ ਤਿਸੇ ਕਿਆ ਚਾਰਾ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰ ਨਹਾਰਾ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਉ ਆਖਣੇ ਔਖਾ ਸੱਚਾ ਨਾਉ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੇ ਭੂਖ ਉਤ ਭੁੱਖੇ ਖਾਏ ਚਲੀਹੈ ਦੁੱਖ ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਨਾਏ ਰਹਾਓ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ ਆਖ ਥੱਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ ਨਾ ਚੁੱਕੈ ਭੋਗ ਗੁਣੇ ਹੋਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਏ ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ ਜੇ ਵਡਿਆਪ ਤੇ ਵਡ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਜਿਹਨੋ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰੀ ਤੇ ਕਮ ਜਾਤ ਨਾਨਕ ਨਾਵੇਂ ਬਾਇਸ ਨਾਤ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾ ਬਿਨੋ ਕਰੋ ਗੁਰ ਪਾਸ ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਣਾਈ ਕਰ ਦਇਆ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇ ਮੋਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਗੁਰਮਤ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸਖਾਈ ਹਰ ਕੀਰਤ ਅਮਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਰਹਾਉ ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਵੱਡ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹਰ ਪਿਆਸ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਸਹੀ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪਰਗਾਸ ਜੈਨ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਰਸ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਭਾਗਹੀਨ ਜਮ ਪਾਸ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ ਜਿਨ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ ਤਿੰਨ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾਸ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਸੰਗਤ ਜਿਤ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ ਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਾਨ ਚਿਤਵੇਂ ਉਦਮ ਜਾ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਉ ਪਰਿਆ ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤਿਉ ਪਾਏ ਤਾਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਗੇ ਕਰ ਧਰਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ ਰਹਾਉ ਜਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁੱਤ ਬੈਂਤਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸ ਕੀ ਧਰਿਆ ਸਿਰਸੇ ਰਿਜਕ ਸਵਾਹੀ ਠਾਕੁਰ ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਉ ਕਰਿਆ ਊੜੇ ਊੜ ਆਵੈ ਸੈਂ ਕੋ ਸਾਂ ਤਿਸ ਪਾਛੇ ਬਚਰੇ ਛਰਿਆ
तिन कवन खलावे कवन चुगावे, मने में ही सिमरन करया। सब निदान दसे अष्ट सिधान, ठाकुर कर तल त्रिया। जन नानक बल बल सद बल जाइए, तेरा अंत ना पारा भरिया। सब निदान दसे अष्ट सिधान, ठाकुर कर तल त्रिया। जन नानक बल बल सद बल जाइए, तेरा अंत ना पारा भरिया। राग आसा महला चौथा, सो पुरख इक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख नरंजन, हर पुरख नरंजन, हर गम्मा गम्मा पारा। सब त्या वही तुद जी, हर सच्चे सृजनहारा। सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा। हर त्या बहो संतो जी, सब दुख विसारन हारा। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्व नरंतर जी, हर एको पुरख समाना। एक दाते एक पेखारी जी, सब तेरे चो जबडाना। तू आपे दाता आपे भुगता जी, हों तुद बिन अवर ना जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख बखाना। जो सेव है तुद जी, जन नानक तिन कुरबाना। हर त्यां वहीं तुद जी। से जन जुग में सुखवासी, से मुक्त पाए। जैनो हर त्याया जी, तैनो टूटी जमकी फांसी। जैना निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी, तिनका पौ सब गवासी। जिन सेवया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी, परे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुद जी। हर अनेक अनेक अनंता, तेरी अनेक करें हर पूजा जी। तब ताप ही जब ही बेअंता, तेरे अनेक पढ़े बहु सिमरत शास्त्र जी। करके रे आखट कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी। जो पावे मेरे हर भगवंता, तू आद पुरख अपरंपर करता जी। तुद जेवड़ अवर ना कोई, तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी। तू नह चल करता सोई, तुदे आपे भावै सोई वरतै जी। तू आपे करहें सो होई, तुदे आपे सृष्ट सब उपाई जी। तुदे आपे सिरे सब गोई, जन नानक गुण गावे करते के जी। जो सब सिका जानोई, आसा महला चौथा। तू करता सचियार मेंडा साई, जो तो पावे सोई थीसी। जो तू देहे सोई हो पाई रहो। सब तेरी तू सबनी ते आया,
जिस नाओ कृपा करहीं तिन नाम रतन पाया, गुरमुख लादा मन मुग वाया, तुदे आ विछोड़िया आ मिलाया, तू दरिया सब तुझ ही माही, तुझ में दूजा कोई नाही, जी जन सब तेरा खेल, वियोग मिल बिछड़िया संयोगी मेल, जिसनों तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाणे, जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद में दूजा अवर ना कोए, तू कर कर वेखे जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए, आसा महला पहला, तित सरवरड़े पाइले निवासा, पानी पावक तिन्हे किया, पंक जो माह पग नहीं चाले, हम देखा तहें डूबियले, मान एक न चेतस मूड मना, हर विसरा तेरे गुण गलिया रहाओ, ना हो जती सती नहीं पढ़या, मूरख मुगदा जन्म पया, प्रणवत नानक तिनकी शरणा, जैनो तू नाही विसरया, आसा महला पंजवा, भई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवर काज तेरा किते ना काम, मेल साध संगत भाजे केवल नाम, श्रंग्याम लाख पवजल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माया कह रहाओ, जप तप संजम धर्म ना कुमया, सेवा साध न जन्या हर राया, कोह नानक हम नीच करम्मा, शरण परे की रखो हो शर्मा, जप तप संजम धर्म ना कमया, सेवा साध ना जन्या हर राया, कहो नानक हम नीच करम्मा, शरण परे की रखो हो शर्मा। इक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कवियो बाच बेनती चाओ पाई, हमरी करो हृदय रक्षा, पूर्ण होए चित्त की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सवय तुम काबो हो, आभाद मोहे बचाव हो, सुखी वसे मोरो परवारा, सेवक सिख सभे कर तारा, मोर अच्छा निज कर दे करिए, सब बैर इनको आए संगरिए, पूरन होए हमारी आसा, तोर भजन की रहे प्यासा, तुम्हें छा कोई अवर ना त्याऊ, जो वर चहां सो तुम ते पाऊं, सेवक सिखा मारे तारी है, चुनचन शतर हमारे मारी है, आभाद मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास निबरिए, हो जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तु जो करी हो रक्षा, राख लो मुहे रखण हारे, साहेब संत सहाय प्यारे,
तीन बन दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतरदस्कंता, काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिव जो अवतरा, काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जमन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा ज्योतियो, जमन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है तहें हमारा, जमन काल सब जगत बनायो, देव दें जक्षण उपजायो, आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिने आप सवारी, शिवकन को शिव गुण सुख दियो, शत्रन को पलमो बद कियो, कट कट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पछानत, चिंटी ते कुंचर असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछन्ने, कट कट के पढ़ पढ़ की जन्ने, जब उदकर्क करा कर तारा, प्रजा तरत तव देहे अपारा, जाव आ कर्ख कर तुहों कब हूँ, तुम मैं मिलत देहे धर सब हूँ, जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे, आप अपनी बोझे उचारे, तुम सब ही ते रहत नरालम, जानत बेद भेद अर आलम, रंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनीर अनाद असंभ, ताका मूड़ उचारत पिता, जाको पीवना पावत बिता, ताको करपाहण अनुमानत, महामूड़ कछ भेद न जानत, महादेव को कहत सदा शिव, रंकार का चीनत नह पिव, आप आपनी बुध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तो है तेती, तुमरा लखा ना जाए पसारा, कि विद सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कहीं पूपा, अंडा जेरा से तज कीनी, उत्पज खान बहुर रच दीनी, कहो फूल राजा हवै बैठा, कहो सिमट पयो शंकर अकैठा, सगरी सृष्टि दिखाए अचंप, आ जुगा श्रू स्यंप, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिखी अवार असिख संघरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेच करो रण गाता, जे आस तो जे तब शरणी परे, तिनके दुष्ट दुख्त हवाय मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो कल को एक बार ते है, ताकि काल निकट नह है, रक्षा हुए ताही सब कल, दुष्ट अरिष्ट टने तत्कल, कृपा दृष्ट तन जहे न हरेओ, ताकि ताप तनक मै हरे हो, रिद्ध सिद्ध घर्म सब होई, दुष्ट शहा शवाय सके ना कोई, एक बार जिन तुम्हें संवारा, काल फांसती ताहे ओबारा,
जिन नर नाम तिहारो कहा, दर्द दुष्ट दोख तेरा, खड़ग के मैं शरण तिहारी, आप हाथ दे ले हो उभारी, शरण हो मोहो सहाई, दुष्ट दोखते ले हो बचाई, खड़ग के मैं शरण तिहारी, आप हाथ दे ले हो उबारी, सरठ मोहो सहाई, दुष्ट दोखते ले हो बचाई। सवैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो, राम रहीम प्राण कुरा, अनेक है मत एक ना मान्यो, सिमृत शास्त्र वेद सभाए बहु भेद कहे, हम एक ना जान्यो, श्री असमान कृपा तुमरी कर, मैं ना कहो सब तोहे बखाने आऊं दोहरा, सगल द्वार कौ छड़ के गए हो तोहारो द्वार, वहीं गहे की लाज अस गोविंदास तोहा, सगल द्वार कौ छड़ के गए हो तोहारो द्वार।

जागृतन परवार परियां शब्द गामण अइया शब्दो तंगावो हरि गेरा मान जिनी वसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब मसारना अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारना सवना गल्ला सुमृत स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले सच्चे साहेबा क्या ना ही कर तेरे करता तेरे सब किछ है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या ना ही खर तेरे सच्चा नाम मेरा आधारो सच नाम आधार मेरा जैनो भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन वसया जैनो इच्छा सब पुजाइया सदा कुरबान कीता गुरु बिटो जिस दिया एह वडियाइया कह नानक सुनो संतो शब्द तरो प्यारो सच्चा नाम मेरा आधारो वाजे पंशव तित कर सुभागे कर सुभागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दो तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुद जिनको से नाम हर के लागे कह नानक तैं सुख होआ तित कर अनाद बाजे आनंद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वसुरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पये सरसे पूरे गुर ते जानी सुनते बोनी कहते पवित सतगुर रहा पर हुरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तुरे सुनते बोनी कहते पवित सतगुर रहा भर उरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तुरे मुंदावणी महला पंजवां थाल विच तिन वस्तु पईओ सत्य संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे आधारो जे को खावे जे को पुंचाए तिसका होए उधारो ए बस्त तजी नह जाई नित नित रख और तारो तम संसार चरण लग तरिए सब नानक ब्रह्म।

पंजवा तेरा कीता जातो नाही मैनो जग की तोई मैं निर्गुण आरे को गुण नाही आपे तरस पायोई तरस पाया मेरा मत होई सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवे हरिया तरस पाया मेरा मत होई सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थी वे हरे वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

चलायो सब सीखन को कमै गुरु मान्यो गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की दे जो प्रभ को मिलवो चै खोज शब्द में राज करेगा खालसा या की रहे ख्वार होए सब मिलेंगे

को सस सस प्रतपल्ले औखी कड़ी ना देखण दे अपना बिरद समल्ले हाथ दे रख अपने को सास सास प्रतपल्ले प्रवसियों लाग रहे हो मेरा चीत आद अंत प्रवस दासाई तन्न हमारा मीत रहाओ मन बिलास पहे साहेब के अचरज देख बड़ाई हर सिमर सिमर आनंद कर नानक प्रभु पूरन पैर रखाई।

हरसिमर सिमर आनंद कर नानक प्रभ पूरन पैर रखाई। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

ज्ञान कवण विद उस्तत करिए सिद्ध साधक ते तीस कोर तिर कीम न परिये बरमादक सनकाद शेख गुण अंत न पाए अगो गहो नहीं जाए पूर सर्व रिहो समाए जय काटी सिलक दयाल प्रभ सेजन लगे पगते हार गुरु नानक जिन परस्यो ते इत उत सदा मुक्ते प्रभ दातो दातार पर्यो जाचक।

देहो दर्शमन चाओ भगत ए मन ठहरावे। बल्यो चिराग अंधियार में सब कल उदरी।

मग पई किंक नी सबद चनतकार खेल पाहे जियो। काल कलम हुकम हाथ कहो कौन मेट सके, ईस बम ज्ञान त्यान तरत ही है चाहे जियो। सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तुही।

सुथर चित भगत हित भेख तरियो हर नख सहरियो नख बिदार जियो शंख चक्र गदा पद्म आप आप कियो छदम अपरंपर पार ब्रह्म लखै कौन तहे जियो सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तुही।

निसबासुर होए कल्याण लहे परमगत जियो काम क्रोध लोह मोह जन जन स्यो छाड़ तो होमे का फंद काट साध संग रत जियो देहे गेह त्रह सुने चित विलास जगत

नूर अरसों कुरसों चटिया तुद डिठे सचे पात मल जनम जनम दी कटी सजन सचा पात साहो सिर साहा दे साहो जिस पास बैठया सोही सब नांदा विसाहो सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब।

बेकार, एक खोंदा खाए चले था उतना पिकाई का। जल थल जिया पूरिया रोआ आकार आया का, ओ जी आखे सो तो है जाने तिना पी तेरी सा। नानक भगता

0: पाए जग तिस जोहारी स्वास्थ तिस तिस देवानिया पग नानक सचे नाम बिन क्या टिका क्या तक महला पहला
1: लख निकिया चंगियाइया लख पुना प्रवा लख तपे तीर्थां।